0: उदयमान नक्षत्र तीर्थक हस्ती पवन विरही पाण्डेको एक तीर्थकता अब शब्द शब्दमा
1: अर्कैलाई मन पराएर मलाई तर्साएर
0: सीआरबीटी नम्बर 01300045429 सीआरबीटी नम्बर 7045652 स्वर नरेन्द्र प्यासी संगीत सन्तोष श्रेष्ठ गीतकार एसएन पाण्डे पवन मोबाइलमा सीआरबीटी र पीआरबीटी डाउनलोड गरे।